अरे मारे कानू कन्हैया, अरे कन्हैया, वो कन्हैया मुझे याद है वो जरा जरा मुझे याद है वो जरा जरा तुम्हें याद

अरे मारे कानू कन्हैया, अरे कन्हैया, ओ कन्हैया, मुझे याद है वो जरा जरा, मुझे याद है वो जरा जरा, तुम्हें याद

0: मैं कौन और क्या हाथ चलने के लिए
1: हाथ चलने के लिए
0: हाथ चल
1: तलक जाए
0: तलक जाए
1: तलक जाए
0: तलक जाए
1: तलक जाए
0: वापस तो ये
1: वापस तो ये
0: वापस तो ये
1: एक कन्हैया
0: एक कन्हैया
1: एक कन्हैया
0: एक कन्हैया याद है कुछ।

अरे महादेव कानो कन्हैया, अरे कन्हैया, ओ कन्हैया, मुझे याद है वो जरा जरा, मुझे याद है वो जरा जरा, तुम्हें याद

अरे महादेव कानू कन्हैया अरे कन्हैया वो कन्हैया मुझे याद है वो जरा जरा मुझे याद है वो जरा

0: मैं कौन हूँ और क्या हूँ, हाथ चलने के लिए
1: हाथ
0: तो,
1: चलने के लिए
0: हाथ
1: तो,
0: चल दूर तलक जाए
1: दूर
0: तलक जाए
1: दूर
0: तलक जाए
1: तलक जाए
0: तलक जाए
1: वापस तो ये नहीं
0: वापस तो ये नहीं
1: वापस तो ये नहीं
0: एक कन्हैया
1: एक कन्हैया
0: एक कन्हैया एक कन्हैया याद है कुछ

अरे मारे कानों कन्हैया, अरे कन्हैया, ओ कन्हैया मुझे याद है वो जरा जरा, मुझे याद है वो जरा जरा, तुम्हें याद

अरे मारे कानून कन्हैया, अरे कन्हैया, वो कन्हैया मुझे याद है वो जरा जरा, मुझे याद है वो जरा जरा, तुम्हें याद

अच्छा यहाँ पर वो मजमून शुरू होता है जिसको तसव्वुफ में कहते हैं तनज्जुलात सित्ता, छह मकामात का जिक्र। फरमाते हैं खाक परो लोगों इस बयाने पर, खाक परो लोगों इस बयाने पर,

अरे महादेव कानो कन्हैया, अरे कन्हैया, ओ कन्हैया, मुझे याद है वो जरा जरा, मुझे याद है वो जरा जरा, तुम्हें याद